0: every choice I've made shows I'm in control. What I...
1: सूचना संगीत और मनोरंजन को अटूट साहिलो यो हो रेडियो साहिलो 99.8 मेगाहर्ट्ज़।

स्टार्टअप लगानी कामी विटा द्वारा 32 पथ सगरमाथा को सफल इबोला भाइरस को संक्रमण निरन्तर बढ्दै 80 जना को मृत्यु स्वयं नागरिक में शंकास्पद केसर फैला पोलैंड में थप सैनिक पठाउने अमेरिका को योजना अंतिम समय में आएर रद्द र भारत में हुने साफ महिला चैंपियनशीप खेलने नेपाली महिला टोली को घोषणा टीम में एंजिला को कप्तानी गर्ने गुजरात विरूद्ध 29 ट्रम्प को जीत निकालेसँगै कोलकाता प्लेअफ को संभावना कायम राख्दै 11 7 स्थानमा उक्लियो।

0: कहाँबाट गर्छु तु?
1: इतो दसैँ हो, नचना गैना रमैना हो, अपन कला संस्कृति बजैना हो। हमरे उधर के जाप कले थे, हमार भैया बाबू करे का सीखे, हमरे एक अर्के माया करते मजा ले भोज करके जापना उधर न गाजे अब चाहना।

निमन्त्रणा राष्ट्रगुरू योगी नरहरिनाथजीको संकल्पमा गोरक्षपीठको आदेश अनुसार 2083 वैशाख 17 गतेदेखि 59 दिनसम्म सञ्चालन हुने श्री शिव गोरक्ष योगी नरहरिनाथ सांस्कृतिक होम महायज्ञ 2083 हवन सामग्री सहित उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। स्थान बागेश्वरी आश्रम देवघाट धाम चितवन। आयोजक श्री बागेश्वरी आध्यात्मिक परिषद योगी नरहरिनाथ आश्रम एवं श्री सनातन सांस्कृतिक संपदा संरक्षण संघ।

0: घड़िया तरफ ही आ गया दौलत।
1: कौन?
0: पता नहीं, दौलती की गाड़ी चला रहा था, मरते मरते बची हूँ मैं।
1: फालतू है साला, मुफ्त में सुन रहा है, मत देख उसको। चल छोड़, मैनेजर देख रहा है।